0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 VDI license number 1039 4।
1: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरबरम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
2: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, RESP ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

good beer, body, mind, and soul. आइए आपका स्वागत है संसार में आत्मा परमात्मा अकेले दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।

देखी चौपाई अमरी करो पूर्ण होए जिंदगी मन रहे हमारा अपना जान करो पारा हमरे दुष्ट सब है तुम काम आप बात दे मोटे बचाओ सुखी बस मानो आपको अपनी आंखें चेक करवानी है आई एग्जाम आई ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज सन ग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे वे म्यूचुअल अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5550 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1115 416-213-1165

वर्कशॉप से बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली सजावट एंड पूजा हट। 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। और आपके लिए ये जो वीकेंड है, बहुत ही प्यारा सा मौसम है और रक्षा बंधन का त्योहार सभी भाई बहन मना रहे हैं। सभी बहनों भाइयों को रक्षा बंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह भाई बहनों का प्यार दुनिया में बना रहे और उन्हें हमेशा खुशियाँ मिलती रहें, बस यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम का संसार। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालियर में है। तो आप उनके जो राखी स्पेशल है, इस महीने की स्पेशल है, वीकली स्पेशल है, ये बने आप और फिर अपने होने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हो। जी हाँ, तो नंबर है आपके लिए 905-799-0045। अगर आपने घर नया खरीदा है, बेसमेंट बनाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया डील्स मिलेंगी, बढ़िया प्राइस पे, बढ़िया क्वालिटी। अब अगर आपने मूव होना है तो आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए। जी हाँ, तो एचके मूवर्स आपके लिए मौजूद हैं, आपके लिए ब्रैम्पटन में मौजूद हैं, तो आप आज ही उनको कॉल कीजिए। कनाडा भर में मूव होने की आपकी मदद करते हैं और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए मूव होने के लिए और कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने के लिए। अगर आप लंदन में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलिजन डिपो अब आपके लिए गोल रोड पे खुल चुका है। आप वहाँ पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना के दे देते हैं, तो बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो आप mastercollisiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी लीजिए। लंदन में गोल रोड पे मौजूद है आपके लिए मास्टर कलिजन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी हैमिल्टन में रहते हो, गाड़ी ट्यून अप करवानी है, विंड ड्राइव करवानी है, उबर टैक्सी आपने सर्टिफाई करवानी है, तो आपकी मदद करते हैं योगीज ऑटो सेंटर वाले। उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं, तो आपकी कोई भी अथॉरिटीज करवानी है, कोई सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपकी पूरी मदद करते हैं। जी आप मिस्टर गिल को कॉल कीजिए 905-547-6464। तो योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन में डाउनटाउन में मौजूद है। तो आपके विंटराइज करवानी है, कार ऑयल चेंज करवाना है, सर्टिफिकेशन करवानी है, तो हर तरह से आपकी मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए योगी ऑटो सेंटर वाले। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। मीना कुमारी, प्रदीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया था ये गीत, आरती फिल्म, अनिता जी।

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाना जरूर पसंद आया होगा। तो जो पुराने गाने थे उनका अपना ही मजा है, तो दिल एकदम खुश हो जाता है, खास करके जब सैटरडे की इवनिंग होती है और रक्षाबंधन का दिन होता है, तो कुछ इस तरह की फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट आपको एडवांस चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसा आउटडोर फर्नीचर चाहिए, घर में बढ़िया फर्नीचर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया प्राइस पे, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है, और उनकी लोकेशंस आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वास में है। तो और जानकारी के लिए, उनकी स्पेशल मंथली वीकली देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। तो अब अगर आप लंदन में रहते हैं, आपकी बड़ी खुशी की खबर है लंदन ओंटारियो में, तो मास्टर कोलिजन डिपो वाले आपके लिए गोर रोड पे खुल चुके हैं, वहाँ पे आपकी कार वैन ट्रक का कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए, masterkollisiondepo.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, उनकी लोकेशन गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। तो अब अगर आप मूव होना चाहते हैं, मूविंग के लिए आप कॉल कीजिएगा, जी हाँ, तो आपको कॉल करना होगा 416-524-7404 कनाडा भर में आपको मूव होने में पूरी मदद करते हैं, और फिर आपके लिए जब भी आपको मूव होना है तो बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचा देते हैं। तो 416-524-7404 तो आज राखी के लिए अगर आपको मिठाइयां चाहिए, खाना लाइव कुकिंग करवाना चाहते हो, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, न्यूली रेनोवेटेड है, वहाँ पे जाके भी आप खा सकते हैं, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703-905-814-1730। तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट वाले। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी है, तो आप बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे जाइए 905-625-0055 905-625-0055 1715 में मौजूद है आपकी सेवा के लिए। तो अब अगर आपने ऑटो रिपेयर करवानी है, आपको ऊबर की सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपके लिए योगी ऑटो रिपेयर 1952 किंग स्ट्रीट पे इस पे मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, और जानकारी के लिए 905-547-6464। तो आइए, ये गाना भी आपके लिए बड़ा सुंदर गाना है, नरगिश और राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया था ये गीत चोरी चोरी फिल्म में, बहुत ही

0: ये जो गाना है, अगर आप उनकी आपस में जो एक्शंस, आंखों के बॉडी लैंग्वेज आप अगर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो दोनों एक प्रेडिकमेंट में हैं। जैसे कि नरगिस चाहती थी कि उनसे और गहरा रिलेशन बना लें राज कपूर, लेकिन राज कपूर तो शादीशुदा फैमिली वाले थे, वो ऐसा करने वाले नहीं थे। लेकिन ये जो जिंदगी के फैसले इस तरह के होते हैं कि कभी आदमी भटक जाता है, तो फिर इमोशंस के बेस पे इस तरह के फैसले नहीं किए जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि राज कपूर के अफेयर्स बहुत सारे चले और ही वाज वेरी रोमांटिक एंड गुड लुकिंग आई थिंक, एंड वुमेन काइंड ऑफ फेल फॉर हिम, बट देन अगेन दिस इज ओनली इमोशंस, मोमेंटरली इमोशंस, इनको पक्का रिलेशन नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो आप भी जिंदगी में अगर कभी ऐसी चीज हो जाती है, बड़ी सक्सेसफुल औरतें थी ये और उनके करियर बहुत बढ़िया थे बॉलीवुड में, तो उनको भी इस तरह की जो चीज उनके अपने फीलिंग्स को कंट्रोल पे नहीं रख सके, और इस तरह से फिर बहुत सारी नाराजगियां हो जाती हैं, बहुत सा दुख दोनों तरफ होता है फिर जब कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल सकती, हो नहीं सकती है, और बजाय कि दोनों तरफ से हर्ट हो, इससे बेहतर हो जाते हैं कि पहले से ही अपने कदमों को रोक लें, अपने आप पर काबू होना चाहिए अपनी, क्योंकि ये इस तरह के फैसले जब इमोशंस पे किए जाते हैं, मैंने इतनी सारी जिंदगियां यहाँ पे देखी हुई हैं बिखरी हुई इसी वजह से, क्योंकि अगर औरत स्ट्रांग होती है घर में तो बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, अगर बंदा स्ट्रांग होता है फैमिली में तो औरत कहीं ना कहीं उलझ जाती है, कहीं ना कहीं वो चक्कर चल जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि औरतों का जो होता है चक्कर वो पूरी जिंदगी में चलता रहता है और कभी पता ही नहीं चलता है। इसी तरह किसी कई बंदों का भी पूरी जिंदगी चक्कर चलते रहते हैं और कभी पता नहीं चलता है। इस तरह की उनकी जो इतने उन्होंने महारत से करते हैं या जो भी कह लो, तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। लेकिन आजकल जो है ना, बड़ा ओपननेस हो गई है, तो लोग ओपननेस में यकीन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई सब पूरी जिंदगी इस तरह जी ले फिर अखीर में पता चले तो वो बहुत और भी ज्यादा हर्टफुल होता है कि पूरा जिंदगी जिसको हमने अपना समझा था वो तो अपना है ही नहीं था। तो आइए अब रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं। ये एक बहन भाई का जो एक दिन बना हुआ है, ट्रेडिशन बनी हुई है, तो रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के पवित्र प्रेम और टूट रिश्ते को मनाने का एक प्रमुख नव भारत इंडिया का जो भारत के ट्रेडिशंस के मुताबिक ये चीज होती है। तो इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र तथा तरक्की की कामना करती है। रक्षा का वचन, भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वचन देता है और उसे उपहार देता है। तो इस तरह से ये जो राखी का त्योहार है मनाया जाता है। अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है, आपको खाना ऑर्डर करना है, क्योंकि वीकेंड में सभी बहन भाई इकट्ठे होते हैं फिर राखी मनाते हैं, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आपके लिए एकदम फ्रेश सारा कुछ मिलेगा, आपको मिठाइयाँ फ्रेश मिलेंगी, क्योंकि उनकी जो टर्न ओवर है ना बहुत ज़्यादा है। वैसे तो जितने भी रेस्टोरेंट है सभी की टर्न ओवर बहुत होती है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा पहले वाले ज़माने से अलग हैं कि क्यों इतना झंझट करें, बनाएं बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। बस इस तरह से लोग बाहर से ही खाना खा लेते हैं। तो आपको अगर खाना ऑर्डर करना है
1: दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव।
0: तो आप जरूर समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामना हो रही है। तो अब बहुत सारे मेले हो रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे इवेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे शोज हो रहे हैं। अभी समर का जो एंड आने वाला है तो इसलिए बच्चे अगले हफ्ते स्कूल वापस चले जाएंगे, तो सभी तरफ से बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर बना हुआ है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, तो एंजॉय कीजिएगा। और फिर मौसम भी, नेचर भी आपका साथ दे रही है कि सभी वृक्षों के रंग बदल जाएंगे, क्या बढ़िया खूबसूरत नज़ारा होगा।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और रक्षाबंधन आपको सभी को, सभी भाई बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को बहुत बढ़िया, आपके लिए भी बहुत बढ़िया हो। सभी को हमारी आपके लिए प्रार्थना है, दुआ है। मैं साथ आपसे विदा लेती हूँ। हमारे होगा बच्चे है तो स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद साथ तो मेरे को तो सभी के जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पहली बारी, तो मैं उन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके बच्चे तरक्की करें, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस यही, इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सुवादा भला। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर की साथ। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओम शांति ओम।
1: तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहोगे तो तुमसे क्या कहूँ।

0: Guide the Sky Radio. Good for your body, mind, and soul.
1: आइए आपका स्वागत है मैं संसार में और जुड़िए आत्मा परमात्मा दिल दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।

0: तुम्हारा अपना जान करो पारा हमरे दुष्ट सब है तुम पाओ आप काट दे मोटे बचाओ सुखी बस मानो।
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में वह मौजूद अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-7533 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

जगत बनायो, तेरे कैच जैसा रूप जाए, आज संकेत है अवतारा, सोए गुरु समझे हम दोबारा, जम शिकार किसी को हमारे, सकल प्रजा की आप से मारे, शिव कंठ को

इस बार शख्स बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली सजावट एंड पूजा हट और पहुँच मिलेगा सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।

0: तुलशयः तव्यं ब्राह्मणेभ्यश्चरिकित्वाय
1: समर्पयेत्।
0: आदित्य

श्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे मे पातु मार्तांडो गुल्फो पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम्।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। और आपके लिए ये जो वीकेंड है, बहुत ही प्यारा सा मौसम है और रक्षा बंधन का त्योहार सभी भाई बहन मना रहे हैं। सभी बहनों भाइयों को रक्षा बंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह भाई बहनों का प्यार दुनिया में बना रहे और उन्हें हमेशा खुशियाँ मिलती रहें, बस यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम का संसार। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो आप उनके जो राखी स्पेशल है, इस महीने की स्पेशल है, वीकली स्पेशल है, आप और फिर अपने होने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हो। जी हाँ, तो नंबर है आपके लिए 905-799-0045। अगर आपने घर नया खरीदा है, बेसमेंट बनाई है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया डील मिलेगी, बढ़िया प्राइस पे, बढ़िया क्वालिटी। अब अगर आपने मूव होना है तो आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए। जी हाँ, तो एचके मूवर्स आपके लिए मौजूद हैं, आपके लिए ब्रैम्पटन में मौजूद हैं, तो आप आज ही उनको कॉल कीजिए। कनाडा भर में मूव होने की आपकी मदद करते हैं और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए मूव होने के लिए और कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने के लिए। अगर आप लंदन में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलेक्शन डिपो अब आपके लिए गोर रोड पे खुल चुका है। आप वहां पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना के दे देते हैं, तो बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो आप mastercollisiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी लीजिए। लंदन में गोर रोड पे मौजूद है आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी हैमिल्टन में रहते हो, गाड़ी ट्यून अप करवानी है, विंटराइज करवानी है, उबर टैक्सी आपने सर्टिफाई करवानी है, तो आपकी मदद करते हैं योगीज ऑटो सेंटर वाले। उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं, तो आपकी कोई भी अथॉरिटीज करवानी है, कोई सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपकी पूरी मदद करते हैं। जी आप मिस्टर गिल को कॉल कीजिए 905-547-6464। तो योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन में डाउनटाउन में मौजूद है। तो आपके विंटराइज करवानी है, कार ऑयल चेंज करवाना है, सर्टिफिकेशन करवानी है, तो हर तरह से आपकी मदद करते हैं। तो ये हैं आपके लिए योगी ऑटो सेंटर वाले। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: कुमार के ऊपर फरमाया जाता है ब्यूटी आंटी फिल्म।

0: ले चलूं नदिया के पास।
1: जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाना जरूर पसंद आया होगा। तो जो पुराने गाने थे उनका अपना ही मजा है, तो दिल एकदम खुश हो जाता है, खास करके जब सैटरडे की इवनिंग होती है और रक्षाबंधन का दिन होता है, तो कुछ इस तरह की फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। अब आपके लिए अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, किचन की गैजेट आपको एडवांस चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसा आउटडोर फर्नीचर चाहिए, घर में बढ़िया फर्नीचर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया प्राइस पे, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है और उनकी लोकेशंस आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। तो और जानकारी के लिए, उनकी स्पेशल मंथली वीकली देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045 9057990045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। तो अब अगर आप लंदन में रहते हैं, आपकी बड़ी खुशी की खबर है लंदन ओंटारियो में, तो मास्टर कोलिजन डिपो वाले आपके लिए वो रोड पे खुल चुके हैं, वहाँ पे आपकी कार वैन ट्रक का कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए, masterkollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, उनकी लोकेशन गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। तो अब अगर आप मूव होना चाहते हैं, मूविंग के लिए आप कॉल कीजिएगा। जी हाँ, तो आपको कॉल करना होगा 416-524-7004 कनाडा भर में आपको मूव होने में पूरी मदद करते हैं, और फिर आपके लिए जब भी आपको मूव होना है तो बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचा देती हैं। तो 416-524-7004 तो आज राखी के लिए अगर आपको मिठाइयां चाहिए, खाना लाइव कुकिंग करवाना चाहते हो, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट वो ब्रिटानिया पे मौजूद है, न्यूली रेनोवेटेड है, वहाँ पे जाके भी आप खा सकते हैं। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703 905-814-1730। तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट वाले। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी है, तो आप बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे जाइए 905-625-0055 905-625-0055 में मौजूद है आपकी सेवा के लिए। तो अब अगर आपने ऑटो रिपेयर करवानी है, आपको उबर की सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आपके लिए योगी ऑटो रिपेयर 1952 किंग स्ट्रीट पे इस पे मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। और जानकारी के लिए 905-547-6464। तो आइए, ये गाना भी आपके लिए बड़ा सुंदर गाना है, नरगिस और राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया था, ये गीत चोरी चोरी फिल्म में, फिल्म के बहुत ही

0: ये जो गाना है, अगर आप उनकी आपस में जो एक्शंस, आंखों के बॉडी लैंग्वेज आप अगर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो दोनों एक प्रेडिकमेंट में हैं। जैसे कि नरगिस चाहती थी कि उनसे और गहरा रिलेशन बना लें राज कपूर, लेकिन राज कपूर तो शादीशुदा फैमिली वाले थे, वो ऐसा करने वाले नहीं थे। लेकिन ये जो जिंदगी के फैसले इस तरह के होते हैं कि कभी आदमी भटक जाता है, तो फिर इमोशंस के बेस पे इस तरह के फैसले नहीं किए जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि राज कपूर के अफेयर्स बहुत सारे चले और ही वॉज वेरी रोमांटिक एंड गुड लुकिंग आई थिंक, एंड वुमेन काइंड ऑफ फेल फॉर हिम। बट देन अगेन दिस इज ओनली इमोशंस, मोमेंटरली इमोशंस, इनको पक्का रिलेशन नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो आप भी जिंदगी में अगर कभी ऐसी चीज हो जाती है, बड़ी सक्सेसफुल औरतें थी ये और उनके करियर बहुत बढ़िया थे बॉलीवुड में, तो उनको भी इस तरह की जो चीज उनके अपने फीलिंग्स को कंट्रोल पे नहीं रख सके, और इस तरह से फिर बहुत सारी नाराजगियां हो जाती हैं, बहुत सा दुख दोनों तरफ होता है फिर जब कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल सकती, हो नहीं सकती है। और बजाय कि दोनों तरफ से हर्ट हो, इससे बेहतर हो जाते हैं कि पहले से ही अपने कदमों को रोक लें। अपने आप पर काबू होना चाहिए अपनी, क्योंकि ये इस तरह के फैसले जब इमोशंस पे किए जाते हैं, मैंने इतनी सारी जिंदगियां यहाँ पे देखी हुई या बिखरी हुई इसी वजह से। क्योंकि अगर औरत स्ट्रांग होती है घर में तो बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, अगर बंदा स्ट्रांग होता है फैमिली में तो औरत कहीं ना कहीं उलझ जाती है, कहीं ना कहीं वो चक्कर चल जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि औरतों का जो होता है चक्कर, वो पूरी जिंदगी में चलता रहता है और कभी पता ही नहीं चलता है। इसी तरह किसी कई बंदों का भी पूरी जिंदगी चक्कर चलते रहते हैं और कभी पता नहीं चलता है। इस तरह की उनकी जो इतने उन्होंने महारत से करते हैं या जो भी कह लो, तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। लेकिन आजकल जो है ना, बड़ा ओपननेस हो गई है, तो लोग ओपननेस में यकीन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तो जब कोई पूरी जिंदगी इस तरह जी ले फिर अखीर में पता चले तो वो बहुत और भी ज्यादा हर्टफुल होता है कि पूरा जिंदगी जिसको हमने अपना समझा था वो तो अपना है ही नहीं था। तो आइए अब रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं। ये एक बहन भाई का जो एक दिन बना हुआ है, ट्रेडिशन बनी हुई है। तो रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते को मनाने का एक प्रमुख नव भारत इंडिया का जो भारत के ट्रेडिशन के मुताबिक ये चीज होती है। तो इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र तथा तरक्की की कामना करती है। रक्षा का वचन, भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वचन देता है और उसे उपहार देता है। तो इस तरह से ये जो राखी का त्योहार है मनाया जाता है। अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है, आपको खाना ऑर्डर करना है, क्योंकि वीकेंड में सभी बहन भाई इकट्ठे होते हैं या फिर राखी मनाते हैं, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री आपके लिए एकदम फ्रेश सारा कुछ मिलेगा, आपको मिठाइयाँ फ्रेश मिलेंगी, क्योंकि उनकी जो टर्न ओवर है ना बहुत ज्यादा है। वैसे तो जितने भी रेस्टोरेंट है सभी की टर्न ओवर बहुत होती है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा पहले वाले जमाने से अलग है कि क्यों इतना झंझट करें, बनाएं बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। बस इस तरह से लोग बाहर से ही खाना खा लेते हैं। तो आपको अगर खाना ऑर्डर करना है
1: This is the most expensive.
0: तो आप जरूर समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामना हो रही है। तो अब बहुत सारे मेले हो रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे इवेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे शोज हो रहे हैं। अभी समर का जो एंड आने वाला है, तो इसलिए बच्चे अगले हफ्ते स्कूल वापस चले जाएंगे, तो सभी तरफ से बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर बना हुआ है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, तो एंजॉय कीजिएगा। और फिर मौसम भी, नेचर भी आपका साथ दे रही है कि सभी वृक्षों के रंग बदल जाएंगे, क्या बढ़िया खूबसूरत नजारा होगा।

हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और रक्षाबंधन आपको सभी को, सभी भाई बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को बहुत बढ़िया, आपके लिए भी बहुत बढ़िया हो। सभी हमारी आपके लिए प्रार्थना है, दुआ है। आपसे विदा लेती हूँ। हमारे बच्चे है तो स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद साथ मेरे को तो सभी के जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पहली बारी, तो मैं उन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके बच्चे तरक्की करें, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस यही इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सुवादा भला। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर की साथ। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओम शांति ओम।

0: पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोहणिया।

राग सुही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा तिस पह आप विचाई दर्शन हर देखण कैताई कृपा करहे ता सतगुर मिलै।

तिस पह आप विचाई दर्शन हर दिखण कहताई कृपा करहि तब सतगुर मिलह हर हर नाम त्याई रहा जी सुख देह तन तुझे अराधी दुख भी तुझे त्याई जे भुख देह तित ही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई अखा फेरी पानी ढोवा जो देव सो खाई नानक गरीब ढह पया द्वारा हर मेल लहो वड्याई अखी काढ धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहल है ता तुझे अराधी जे मार कढ़े पी त्याई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदा ता छोड़ न जाई जे तुद वाल रहे ता कोई कहो आखा तुद विसरे मर जाई

नानक विचारा भया दीवाना हर तो दर्शन कहताई चखड़ चागी मीहो वरसै पी गुर देखन जाई समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक का होए सेवक वरता कर कर बिनों बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई जो तुझ सेवै सो तू है होवै तुझ सेवक पैज रखाई भंडार भरे भक्ति हर तेरे जिस भावै तिस देवाई जिस तो देह सोई जन पाए होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगै नानक विचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागै जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोलै सो थाए पाए मनमुख किस थाए न पाई पाला कक्कर वर्फ वरसै गुर सिख गुर देखन जाई सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेको पाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई रैन दिलस गुर चरण राधी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अगाई नानक का प्रभु पूर रहयो है जत कत तत गोसाई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अगाई नानक का प्रभु पूर रहयो है जत कत

0: इस पहर आप विचाई, दर्शन हर देखण कहताई, कृपा करहे ता सतगुर मिल है, हर हर नाम त्याई।
1: स्वागत जी फिर तो पंजाबी लहरा रेडियो प्रोग्राम दे नाल। तुसी इस वेले जो बने हुए हो, एतवार दा दिन थानू सारयां नू जी बहुत बहुत मुबारक होवे। 30 अगस्त आ चुकी है ते देखते हैं देखते हैं अगस्त दा महीना भी लंघ चलिया ते सितंबर दे विच जद दाखिल होना है ते फिर जो फॉल दा आगमन, जो पतझड़ दा आगमन जो है वह होना है ते उस दे नाल फिर लगना कि मौसम दे विच भी काफ़ी तब्दीलियां आनियां ने। पर फिलहाल जो है मौसम इस हफ्ते जो है वह ठीक रहेगा, चंगा रहेगा। खैर अज थोड़ी बहुती ठंडक जरूर महसूस होनी है, इस वेले 20 डिग्री तापमान ते मीह दी पूरी तैयारी है। दिन भर अज मीह दे 80% तो वध आसार ने ते बदलवाई जिथे रहनी है दोपहर तक मीह दे पूरे आसार ने ते मौसम दे विच जो टेंपरेचर दे विच जो है वह हुण नालों सवेर नालों थोड़ी घट वध ही तब्दीली आनी है। सो 20-22 डिग्री दे लागे ही अज दा तापमान जो है यह रहेगा ते इस तरह कल दा मौसम होना। पर उस तो बाद टेंपरेचर जो ने वह 29 डिग्री तक भी इस हफ्ते जाण दी पूरी उम्मीद है। सो सितंबर दा जो पहला हफ्ता भी होण वाला, सो यह भी कह सकते हैं कि गर्मी इस वेले भी जो है वह पूरी रहेगी। हालांकि जो शुरुआत सितंबर दी है वह मीह दे नाल जो है बिल्कुल रहनी है। सो 6:39 ते जी अज दा जो दिन है यह चढ़ना है हौली हौली, जो सूरज दीआं किरणां दे नाल चानण जो है थोड़े चिर दे विच होवेगा। दिन की शुरुआत जो असी कर रहे हैं, सो सब तो पहला जी मन दे विच उस परमात्मा दा जरूर शुकराना करिए जिसने यह सोहना दिन सानू दिखाया, सानू जो समा दिता कि यह समा जो है असी बतीत कर सकीए चंगीआं यादां नू अपने जो जिंदगी दी लड़ी दे विच परो सकीए। सो जी एतवार दा दिन ते पूरा हफ्ता जो है, जो सारे हफ्ते जो कामकार कीते हुंदे ने, जो थकावट महसूस असी करदे आ, सो अज दे दिन ही मौका हुंदा है कि अपना आराम जो है फरमाई ते नाल ही फिर चलो घर दे कम्मां दी तैयारी भी पूरी हुंदी है। सो उम्मीद करदे आ जी अज दा थोड़ा जो दिन है यह पूरा सफल रहेगा ते जो सोचिया ठाणिया है, जो अज दे दिन दी प्लानिंग है वह सारियां दी संपूर्ण जरूर होवे जी। सो पंजाबी लहरा रेडियो प्रोग्राम दे नाल इस वेले जो तुसी बने हुए हो, बहुत ही प्यारी सवेर है ते इस सवेर दे विच साडे नाल तुसी गल जरूर कर सकते हो। नंबर 905-673-3337 905-673-3337 जी साडे स्टूडियो दे नंबर ने ते नाल ही थानू असी नंबर यह भी नोट करवा दिए जी कि फोन राही तुसी इस प्रोग्राम दे नाल जुड़ सकते हो ते फोन राही कॉल करके नंबर तुसी प्रोग्राम नू सुन सकते हो। नंबर 416-477-2040 416-477-2040 यह नंबर है कैनेडा दे लई। कैनेडा दे विच किसी भी प्रोविंस दे विच तुसी ये नंबर डायल करके सुन सकते हो जी प्रोग्राम। US दे विच भी नंबर 641-741-0860 जी तुसी नोट रखना है, 641-741-0860 जी यह US का नंबर है। इस नंबर नू भी नोट कर लो जेकर थोड़ा जो समा है इस वेले दा 6 to 8 दा US दे विच हुंदा ते 641-741-0860 जी नोट करना। इस दे नाल ही जी मैं थोनू नोट करवा देवां कि दुनिया भर दे विच किते भी तुसी प्रोग्राम नू लाइव सुन सकते हो जी साडी मोबाइल ऐप पंजाबी लहरां दे नाल ते बस इंटरनेट चाहिए थोड़े फोन ते ऐप पाई होवे ते तुसी प्रोग्राम नू फिर जरूर सुन सकते हो। सो प्रोग्राम पंजाबी लहरां जी 2 घंटे जो थोड़े नाल AM 530 दियां तरंगा ते बिल्कुल रहेगा ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੋ 6:30 ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜੋ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ 1 ਘੰਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 905-673-3337 905-673-3337 ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਐਚ ਕੇ ਮੂਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੰਬਰ 416-524-6604 ਜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਐਚ ਕੇ ਮੂਵਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਓਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੂਵਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ,

0: राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walon paise di mang, ode hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang, karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara, bina vyaj nikkiyan nikkiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100. कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर, तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
0: Rajdhani
1: Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000 88 12 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का निघा स्वागत, और जिहड़े दोस्तों ने हुणे ट्यून इन किया जी उन्होंने निघी जी आखदे हैं, क्योंकि अपना साथ हर एतवार वाले दिन 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल बन जांदा है। 12 तो 1 रामस पंजाबी ते 1 तो 2 सुणदे हो प्रोग्राम नजरिया। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल। इन्हां प्रोग्राम्स दे दौरान साढ़े नाल स्टूडियो च गलबात करन वास्ते टैलीफोन नंबर हुंदे ने जी 416-233-7768 जां 8297 416-233-7368 जां फिर 8297 ते अपनी गलबात हो सकदी हुंदी है। अगर प्रोग्राम तो बाद दे विच 2 बजे तो बाद तुसी मेरे नाल कोई भी गलबात करनी हुंदी है तो फिर 416-666-9137 ते की जा सकती हुंदी है। 416-669-1379 मेरा परसनल नंबर है, और इस वेले आप जुड़ चुके हैं जी प्रोग्राम नज़रिया दे नाल, और 2 बजे तक अपना साथ जिहड़ा इस तरह नाल ही बनिया रहेगा। और साड़ी गलबात का सिलसिला थोड़े तक पहुँचाने विच मदद सानू रीमैक्स प्रेजिडेंट रॉयल्टी दे वल्लों मिलती है। 416-669-1379 ते तुसीं गलबात कर सकते हुंदे हो। कोई भी तुसीं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है जां कमर्शियल है, लीज़ ते तुसीं देनी आ, लीज़ ते लैनी आ, वेचनी चाहुंदे हो, खरीदनी चाहुंदे हो, ते साडे नाल संपर्क तुसीं कर सकते हो 416-666-9137। सानू एक योगा क्लासेस दे वास्ते स्पेस चाहीदी है जी ब्रैम्पटन दे विच, अगर किते भी थोड़े पास एयरपोर्ट क्वीन दा एरिया जे आपां ला लईए जां गो रोड तक किते भी किसी भी प्लाजे दे विच कोई भी थोड़े पास मेन फ्लोर ते होवे तो बहुत जिहड़ा उह एक वधिया होएगा जी। सो उहदे वास्ते जे कोई 300-400 स्क्वायर फीट दा थोड़े पास स्पेस हैगी, अप टू 500 तक भी, 500 स्क्वायर फीट तक, ते उहदे लई सानू कॉल कर लियो 416-666-9137 मेरा टैलीफोन नंबर है। तो जेकर तुसी ऑफिस सैकेंड फ्लोर ते लीज ते लेना, प्रोफेशनल ऑफिस कोई अपना सैटअप तुसी करना, तो फिर ड्रू एंड डिक्सी रोड का एरिया 93 ड्राइव ते है, सैकेंड फ्लोर ते है, बहुत शानदार ऑफिस है, खुली जिमें नैचुरल लाइट है जी उस ऑफिस दे विच, और तुसी इंजॉय करोगे। अगर तुसी अपना कोई भी ऑफिस उत्थे प्रोफेशनली कोई भी ऑफिस अपना चलाना तो उहदे वास्ते सानू लीज ते लैण वास्ते 416-669-1379 ते कॉल तुसी कर लेनी है। उस तो अलावा इंडस्ट्रियल एक यूनिट सानू जरूरत है ब्रैम्पटन जां बोल्टन कैलेडन दे विच किते भी, 4,000 स्क्वायर फीट दा एरिया होवे, ड्राइव इन डोर दी रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी है, उन्हों लीज ते तुसी देना ते तद भी तुसी 416-666-9137 ते कॉल कर लेनी है। एक कोई 6,000 स्क्वायर फीट तक दा इंडस्ट्रियल यूनिट जिहदे नाल 8 तो 10 ट्रेलर पार्क हो सकते होण किते भी ब्रैम्पटन कैलेडन मिल्टन इस एरिए दे विच किते भी तुसी वेचना चाहुंदे हो ते क्वालिफाइड बायर साडे कोल है जी, उहदे लई भी 416-669-1379 ते तुसीं संपर्क कर सकते हो। ऑप्टिकल वन नूं कॉल करनी है 905-455-0752 उहनां दा टैलीफोन नंबर है, 2 लोकेशन तों सेवावां दिंदे ने, पंजाबी बाय नेचर 416-937-2061 ते तुसीं उहनां दे नाल गलबात कर सकते हो। ड्रीम होम अपलायंसिस ते कॉल करन वास्ते टैलीफोन नंबर 905-805-3000 है जी, इस नंबर ते कॉल करके जानकारी लै लेनी है। किंग टोइंग 416-677-2222 ते उहनां दे नाल संपर्क किया जा सकता है। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 टैलीफोन नंबर है, और गिल स्वीट फैक्टरी 905-799-2616 ते संपर्क करके जानकारी तुसीं लै सकते हो। ऑल ओवर कैनेडा 6 लोकेशन तो सेवावां दिंदे ने, जिन्हां दे विच 4 साडे इत्थे ETH ते 2 लोकेशन कैलगरी दे विच ने। कोई भी जानकारी तुसीं लैनी होवे गिल स्वीट फैक्टरी .com जां फिर 905-799-2616 ते संपर्क करके ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੱਡਾ ਜੀ, 416-747-6803 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। 21-39 ਮਿਲਬਰਕ ਡਰਾਈਵ ਨੌਰਥ ਯੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਟੱਡਾ ਜੀ। 416-747-6800-417-747-6800 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ।

कैसा दार म्यूजिक है। देखो कला कला पीस जरा वज रहा ना म्यूजिक का, जे ढोलक वज रहा तो ओरी गल वखरी है, जे मैंडोलिन वज रही है या फिर कीबोर्ड वज रहा या कहते कि तबला वज रहा, हर गल जी है खड़क के बहर आ रही है। चरणजीत हूजा दी यही बहुत, वैसे तो कहते हैं कि बड़े संगीतकार होए ने, पर जो गल चरणजीत हूजा ने बना देनी है वो मेरा ख्याल है कि आने वाली नस्लां जिहड़ियां वो नहीं बना सकनगियां, क्योंकि हुण तां सारा कुछ सॉफ्टवेयर ते आउण लग पिया। ते हूजा साहब ढिड्डों अंदरों दिमाग चों दिलों पूरा संगीत ही संगीत सी।